0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saeed Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rami Shrock.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saeed Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rami Shrock.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा गाती हो और उससे भी अच्छा नाचती हो। क्या नाम है तुम्हारा?
1: सीमा।
2: भाई ये अपनी वीरू की बहन है।
0: बहुत अच्छी बहन है जो एक बेकार भाई को कमा कर खिला रही है।
3: अस्सलाम वालेकुम जी, आप सुन रहे हैं लिंक FM 96.7। मैं हूं इफ्तिखार ठाकुर और आपके साथ सफर साथ साथ करता रहूंगा।

बर्क तभी न रही शोलाए मकाली रही, रस्मे आजा रह गई रूए बलाली न रही, रस्मे आजा रह गई रूए बलाली न रही। फलसफा रो देखें, यही बातें जो है अल्लामा साहब की आज से 100-125 साल पहले उन्होंने बताई कि एक वक्त आएगा, बल्कि शायद वो समझते थे उस वक्त भी, वो ये समझ रहे थे क्योंकि अल्लामा साहब ने ये नज़्म तस्वीर दर्द जब लिखी या जवाब शिकवा लिखा, उस दौर के अंदर मुसलमान महकूमे की जिंदगी गुजारते थे, लोग और हुकूमत कर रहे थे, ये सोए हुए कौम थी, गफलत की नींद सो चुके थे। तो अल्लामा साहब सब लोगों से जो स्टेज पर थे उनसे ये मुखातब होकर कहते इन लोगों को जो है वो जगाया जाए। अब वो लोग जो है वो जाग नहीं रहे हैं, उन लोगों के अंदर तड़प है, तो अल्लामा साहब जो है वो फिर वो कहते हैं कि वाज़े कौम की वो पुख्ता न रही। वाज़े कौम जो है, जो कौम जो लोगों को जो है वाज करने वाले हैं, तकारीर करने वाले हैं, ये स्पीच करने वाले हैं, ये स्कॉलर हैं, उलमा कराम हैं, असातिज़ा हैं, वो लोग हैं जो वाले हैं, वो उनकी बात बात हो रही है पुख्ता ख्याली, उनके अंदर वो ख्यालों में पुख्तगी ख़त्म हो गई। और पुख्ता चीज़ जो होती है वो बड़ी मेहनत के बाद पुख्ता होती है। ये सड़क होती है, सड़क पुख्तगी जी, एक होती है पुख्ता, अब पुख्ता होती है ना, बस वो जसू की हद तक है, वरना को सही पुख्ता भी अरसा गुजर से वो आगे दूर नहीं हो सकती। कभी ये जो कौम अंग्रेज कौम जो दुनिया के अंदर मुख्ती लोगों के अंदर रहे हैं, बड़े दूर दराज रहे हैं, हर जगह पर उन्होंने हुकूमत की है, बल्कि इनकी हुकूमत का जो है वो कहते हैं कि सूरज जो है इनकी जो हुकूमत का जो एरिया था उनमें कोई सूरज गुरूब नहीं हुआ। लेकर अमेरिका तक ये सारा सिलसिला आप जानते हैं।

जो कौन अपने से बड़े अपने बाबा जान पर, दादा जान पर, उससे पर, उससे किसी मैं समझने कि कोई भी जो आपसे बड़ा हो, अगर जब जाने वाले यानी अगली जो नस्ल है, यंग जनरेशन है, जब अपने बड़ों का एहतराम तो वो हासिल कोई ना कर सके। इसकी एक साल दे दें कि यकीन करें कि इन मुल्कों के अंदर या दुनिया के मालिक के अंदर जब आप पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं तो आपको जो है एक थीसिस, एक मकान होता है, एक बुक लिखनी पड़ती है, किताब लिखनी पड़ती है, उसके अंदर 10 चैप्टर हैं, 6 कोई कुछ उसकी लिमिट होती है कि इतने अल्फाज होने चाहिए या इतना कुछ होना चाहिए। और वो आदमी जो है, मर्द और ख्वातीन जो भी पीएचडी करता है, वो अपनी रिसर्च के मुताबिक अपना आइडियोलॉजी, अपना नजरिया पेश करता है उस किताब के अंदर। अब वो किताब है, हो सकता है सारी की सारी बात, मसला एक आदमी फिजिक्स में कर रहा है और वो न्यूटन को जो है वो कोसना शुरू करता है कि न्यूटन से ये नहीं किया, वो नहीं किया, उसकी जगह ये, वो तरकीब कर, या किसी को नहीं, आप नजरिया। लेकिन अगर उसने बिल्कुल लिखी, उसके बावजूद वो अलमारी में जरूर रहेगी, वो रिकॉर्ड मौजूद रहेगा, आने वाले उसको पढ़ते रहेंगे। अब उसकी नजरियात को मानना ना मानना किसी की एक अपनी बात है। कहने का मकसद ये है कि ये हमारे यहां ये हो गया, क्या हो गया, ये तनकीद तो हम हो रही है। लामा साहब फरमाते हैं कि फलसफा रह गया, वो किताबें सारी उनकी मौजूद हैं, लेकिन तलकीनें रही, वो तरीके से जिस तरीके से बात थे, जिस तरीके से बात उसको आगे लेकर जाते थे, वो बात खत्म होगी। इसका मतलब ये जो कि वो खलूत की बात दुनिया खड़ी हो जाती है क्या।

अपना काम करते, आज का काम जो है वो चूंकि हम हर काम में बददियंती हमारे अंदर आ चुकी है, हम जो है वो बहुत जल्दी से जल्दी अमीर कबीर बनना चाहते हैं, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ये सारे के सारे पैसे कब मुझे मिले और जेब में डाल दे। बस का मतलब यह कि वो लोग शौक से करते थे, दिल से काम करते थे, खुलूस नियत से करते थे, रोजी अलाल कमाने की कोशिश करते थे और अपनी शोहरत जो है वो वैसे झूठ फ्राड के जरिए एक झूठी शोहरत नहीं बल्कि असली शोहरत हासिल करते जब वो अपना काम सही करते। जिस तरीके से मैंने ये बात की है, ये कि अंग्रेजों की इमारतें जो है अगर आप देख लें, अब आप अपने मुल्क में देख लें जाकर, दुनिया के किसी कोने में देखा। अच्छा एक और बात भी है, ये तो हो गया ना इनकी जो अंग्रेजों की बात हमने की है, अगर आप किसी और मुल्क में जाएं, सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर जाएं और उन जो इमारतें आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले, वो से इससे भी ज्यादा अरसा पहले, उन लोगों की जो इमारतें बनी हुई हैं, अगर उन इमारतों को भी देखा जाए, यकीन करें बहुत बड़े शाहकार हैं जी। दुनिया की जो है वो आप देखेंगे कि यार क्या ये क्या किस तरीके से लोगों ने बनाई है, कितना इंजीनियरिंग का वर्क है, कितना अच्छा काम है। इसका मतलब है कि वो भी दिल से बड़ी शौक से ये चीजें करते थे और क्या है ईमानदारी दयानदारी जो है वहां पर नजर आ रही है। तो बात कहने का मकसद ये था कि हमें आज हमने जो है अपने आप को देखना है, अपने आप को सुधारना है, अपनी औलादों को ठीक रखना है, अपने अहल अयाल को ठीक रखना है, अपनी लीडरशिप। देखो पिछले हफ्ते हमने ये बात की थी कि कुरान पाक ने फरमाया कि आप अपने आप को और अपनी औलादों को जो है वो जहन्नम का ईंधन ना बनाओ, जहन्नम की आग में ना डालो जिसका ईंधन जो है ये पत्थर और इंसान होंगे। इसका मतलब ये हुक्म दिया गया है अपने आप को भी हमने बचाना है। अब इससे बचने का तरीका बिल्कुल यही है, जो हम सही रास्ते पर आ जाएंगे, सही तरीके का पर आ जाएंगे और सही समझने पर आ जाएंगे कि जो है वो और अपनी जुबान में तासीर पैदा रखने की कोशिश करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह वो जो जो आग है उसके से हमें बचने की जो है अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम इंशाल्लाह बच जाएंगे। ईमान की बड़ी ताकत है, बड़ी दौलत है, लेकिन ईमान जो है वो सिख के साथ अमल वाली बात जो है ये हर जगह पर मौजूद है। ईमान के साथ अमल भी की बात भी साथ ही आई है और थ्योरेटिकल जो बात है, मैं कई बार ये कह चुका हूं कि किसी सब्जेक्ट में अगर अमली जो है साइंस की बात अगर करें तो अगर वो थ्योरी में 100 के 100 नंबर बंदा लेता है या 80 के 80 लेता है, प्रैक्टिकल में वो फेल है तो फेल सवर किया जाएगा, उसको पास की सनद नहीं मिल सकती। हमारा दीन तो 100% जो है अमली दीन है जी, जबानी तो ठीक है, जबान तो जबान से हम इकरार तो करना पड़ता है जी, इकरारे बिल लिसान तस्दीक बिल का, ये तो फार्मूला फकीरों का है। और यकीन करें आखिरी बात में ये है कि अगर किसी ने अमल किया, अगर किसी ने अमल करके दिखाया वो कौन है, वो अल्लाह के वली अल्लाह के बुजुर्ग, ये फकर वाले लोग हैं, अहले फकर हैं, इन करके दिखाया। और उसकी एक मिसाल देकर अपनी मजमून तरफ चलते हैं कि देखें अज़ीज़ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो किसी सफर पर हैं, जा रहे हैं पढ़ने के लिए, छोटे हैं उम्र में, उस वक्त जो है वो यूनिवर्सिटी हर जगह पर, मैं पहले बता चुका हूं कि बड़े दूर दराज के पैदल सफर करने पड़ते थे करने के लिए, माएँ और वालदेन जो थे वो छोटे छोटे बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजते। आज जो है वो हम बच्चों को पैसे कमाने के लिए तो भेजते हैं किसी और, लेकिन इस फील्ड में हम उस तरीके से शायद ना भेजें। बहरहाल तो कहते हैं कि जब रास्ते में डाकू पड़ गए, उनकी वालदा मोहतरमा ने क्या किया कि पैसे जो थे, कोई दिरहम थे दिनार थे, वो उनकी जो है वो कमीज के अंदर सी दिए भाई, उसके अंदर जो है छुपा दिए, रख दिए किसी जगह पर और सुई से वो सी दिए कि शायद ये रास्ते में कुछ डाकू चोर भी होते हैं, जब ये पहुंच जाए तो उनको बताया कि फलां जगह पर पैसे हैं वो वहां पर। और बेटा जो है वो मेरी नसीहत ये है कि हमेशा सच बोलना है। अब यार हमारी जो है घर गुरु के अंदर हम नहीं कहते बच्चों को हमेशा सच बोलना है, हर आदमी कहता है जी, कौन आदमी जो नहीं कहता, किसी ने कहा बच्चे को चंगा झूठ मार रजीद है कर, कोई बंदा कहता है, बिल्कुल नहीं कहता यार, हर आदमी ये चाहता है मेरे लाभ भी तो, कौन आदमी नहीं कहता जी, खुद अगर हो जाए, लेकिन सिर्फ क्या है अमल की कमी है। अमल आज हम खुद करना शुरू कर दें तो बात ज्यादा खत्म हो जाती है। और देखें कि वो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमत पीर पीर सरकार गौस बाग जो है वो जा रहे हैं, रास्ते में कोई काम हो गया, डाकू आ गए,
ڈاکو نے جو ہے سارے قافلے کو لوٹ لیا. ایک ڈاکو ان کے پاس آیا, انہوں نے کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ ان کا میرے پاس تو پیسے دینار ہیں. اب یہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آج کا بچہ ہے, آج کا والدین ہے, آج کی والدہ ہے, کیا کسی بچے کی تربیت اس طرح کرے گی؟ ہو نہیں سکتا. یا بچہ اس طرح تربیت یافتہ ہوگا, وہ تو کہے گی کہ پیسے چھپائی تو رکھے ہوں, اگر کوئی چور چرا ہے کوئی بندہ بھی منگی نہ تو آخر کون سے پیسے ہمارے کول ہیں جی. وہ یہ کہے گی کہ یہ جو ہے وہ, یا والد سے یہ کہے گا کہ اگر پیسے ہیں بھی تو کسی کو دینے نہیں, اور کوئی آدمی کہتا ہے میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طریقے اس کی تربیت ہوگی. وہ چونکہ بات ہی اور ہے تو کیا ہوا کہ پھر وہ وہاں پر جب پہنچے تو وہ, اب وہ اس نے تلاشی کی تو اسے پورے پاس پیسے نہ نکلے, وہ اپنے سردار کے پاس لے گیا. سردار نے پوچھا جناب, انہوں نے کہا بالکل جی میرے پاس پیسے ہیں جی. کتنے کہاں ہیں پیسے؟ انہوں نے کہا پیسے جو ہیں میری اس قمیض کے اس حصے میں سیے ہوئے. انہوں نے واقعی جو کھولی اور دیکھا پیسے یہاں پر چھپائے ہوئے تھے. تو اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ یہ بتانے کی ضرورت, ہم تو چور ڈاکو ہیں, یہ پیسے چھپا لیتے اپنے آپ کے, اپنے پیسے ہم تو جو ہے وہ لوٹ کسوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میرے والدہ نے کہا تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے, ہمیشہ سچ بولنا ہے. تو یقین اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے سارے وہ چوروں گٹھا کیا, کہنے لگا یہ سب سودا سامان جس چیز کا ہے واپس کرو. یہ ان کی عمر دیکھیں لیکن والدہ کی نافرمانی نہیں کرتے. میں کتنا بڑا ہو گیا ہوں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے سارا کام چھوڑ دیا. تو زمین صاحب اسی بات میں فرمایا تھا کہ چوراں نو پھڑ کتو بناویں, چوراں نو پھڑ کتو بناویں, میں بھی چور و چکا جس در جاواں تکے کھاواں ایک تیرا در تکا. بہرحال یہ بات تو آگے ہے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے عمل کر کے دکھایا اور ان کی آج ان کی اس عمل کی باتوں کی آج ہم جو ہے بات کر رہے ہیں. تو جو ہے وہ علامہ صاحب کی شاعری تصویر درد نظم ہے جی. اس دن ہم نے یہ کہا تھا

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
4: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07809 568233 or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
5: लो जी सुनो जी आई गए खान कैटरिंग आले खान कैटरिंग राधनम जिन्होंने मजेदार खाने ना कोई जवाब है नहीं एक बारी अजमाई के तको शादी ब्याह सालगिरह मानिया मेहंदी और दिगर तकरीबात आस्ते एक महंगाई ने दौर विच सस्ता ता मजेदार खाना आर्डर पर बनवाई सकने हो एक और भी गल बुझो खान कैटरिंग राधनम वाले पूरे साउथ यॉर्कशायर विच कैटरिंग नी डिलीवरी भी करने आर्डर निका होया या बड़ा ऑलवेज वेलकम खाने ने आर्डर वास्ते भाई इफ्तिखार की फोन करो या व्हाट्सएप पर رابطہ करो 07931737547
6: या 07784850934.
7: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11am till 2pm. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.
8: Photography is a hobby passion, not a career. पहले तुम अपना future संभालो, फिर हमारे future की बारे में।
9: सच में वक्तों की बादशाह है, आसम बिन सफान। कितनी दौलत उसके लिए थी, कितनी कितनी सल्तनत है, कितना मुल्क उसने अंडर है। यानि बादशाह सलामत की कड़ी परेशानी है, वो सब कुछ बेटे ने वाला करने पे, लेकिन बेटा इश्क की गिरफ्तार हो गया, बेटे की और बीमारी मोहब्बत ही लग गई, वो सब चीजें छोड़ दीतियां, मुकम्मल तौर पर छोड़ दीतियां। और अंदाजा तो लाई करो कि जितना चीजा बंदा छोड़ना ना ये तक भी घर वाले सारे किसी तक पहुंचे है जी। वैसे ये ट्राई अपने आप पर करने की जरूरत नहीं, आई ने दूर जगह बार कोई कम छोड़ देना कि मैं कोई सारा कम छोड़ता तो मैं उन फकीर बन रहा, तो फिर यकीन अगर सही पक्के फकीर ही हासिल करना चाहें फिर तो लभ ही जासी, तो वैसे मुश्किल अगर कले भी दे तो पूछना भी कोई नहीं है जी, क्योंकि पूछना याद रखे भी जिसलै बंदा बिल्कुल कला हो जाना, बिल्कुल ही तनाई पसंद हो जाना, और ये सारे जो ऐरे वैरे जितने भी ये इस नालू हटी जाने तो उस लेवल टोटल मदद अल्लाह नहीं इसनी, अल्लाह उसले राजी होना अल्लाह, क्योंकि वह बंदा सारी दुनिया के नालू सटाई सटिया लेकिन अल्लाह ने रस्ता उसने छोड़िया, मंजर उसने छोड़ी। देखो ये शहजादा है ना, ये जितने भी तो ना जुलो ना थोड़े टाइम से बाद सारे खत्म हो जाते हैं, यो बिल्कुल तना जिले अपने महबूब की लगती ना हासिल कर सी तना तनाई हासिल कर सी तनहा ये लगती और भी फिर इसकी हौसला लब सी फिर इसकी नाल बाद नीच फिर उसने दो साथ वो भी लब जासी है जी। ये इश्क जान इश्क इस नाल ये अकल भी नाल थोड़ी थोड़ी हैं, ये पिछा रिड़की रुड़की रहनी नाल। बहरहाल एक अलग फिर बहस हुई सी तो हज़रत मियां साहब फरमाते हैं वो

किलो किलो, लेकिन वह जी उसी उसी फिक्रे चल फरमा मियां साहब ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਛਿਪਾ।

लेकिन अंदरिया बड़ी सही है। ये जरा कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी सुखेत रहे अपनी बस्ती बिच है तो फायदा हो जा सी। लेकिन जान की किताब चिट्टे कपड़े जबरदस्त अंदर कुछ नहीं याद रखे वे। और मोमन की निशानियां भी ये निशानी है कि जरा जिस तरह जाहिर हुआ है उस तरह उसने बाकी होना चाहिए ना, बंदे जाहिर बंदे की तकन मिकी कर जाहिर तकन तो पता है ये मोहम्मद रजाक जो है अंदरों लेकिन जाहिर बदा गल्ला कर रहा तो अंदरों में बिल्कुल सहत रहा हूं फिर मैं इस तबके जना अच्छा। अल्लाह ताला खैर फरमाए तो अल्लाह ताला से हिदायत नसीब फरमाए। और फकीर हुआ जिससे हर देखिए बिल्कुल युद्ध लेकिन अंदर उसका निजाम इतना अच्छा है कि उस मोहब्बत और प्यार और इश्क और महबूब उसका दिल जो है बाकी दुनिया ने सारी चीजें मोहब्बत खत्म कर दी हो उस महबूब तो फिर उसकी बहुत कुछ नवाजा जाना फिर उसकी बड़े बड़े मैडल लेकिन वह मैडल दस है ना उन्हें अंदर सब कुछ हो गया बस। मैं तो दस कि बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे बहुत बड़े वो गल करने से कि वो मुफ्ती जगह पर खिताब करने से मैं नाम उन्हें भुली गया वो खिताब करने से तो खिताब घंटे दो घंटे बड़े भी दुनिया मखलूक अच्छा है तो जिस वे खिताब कर जान तो एक बुजुर्ग बैठे हुए से कोई इस तरह सादे कपड़े फटे पुराने लगे उन्होंने बेही रहना वो जो बंदे से नाल उन्होंने तकरीर सुनने उन्होंने हाजी गल सुनो बड़ी परेशानी की गल है असं वास्तव बड़ी अजीब बात लगनी कि तुम सारी दिन उतने आने हो लैक्चर देने हो असं कितने हजार बंदा या कितने सौ बंदा या कितने चलो बड़ी तादाद ही लोग सुनने देखने तुम फतवे देने हो बड़ा इल्म रखने हो लेकिन जो इतना किसी बहने हो तो उन्होंने कोई बोलने चालना तो है कुछ नहीं बुढ़ा जनाब बाबा जरा बैठा वा इनके कोई बहने मकसद है इसने हालत ही कोई नहीं उन्हें है ना गल इस तरह नहीं है मैं सारी गल् दसना ना मैं तो तुसा सारे अल्लाह की जानने हैं जी अल्लाह की जानने हैं जानने से मुराद यह भाई असं अल्लाह का जिक्र करने हैं मतलब मुख्त खसूसियात बयान करने हैं तौहीद बयान करने हैं जन्नत ना दोज़ख ना हर मतलब किस्म ना भाई अल्लाह ने डर नहीं दसने असं सिर्फ जानने जा तक हाँ लेकिन ये जेडे अल्लाह के पछाने फर्क इतना अल्लाह ताला असं की राय दैन सी फरमाया जी। बहरहाल ये चूंकि लोग ये वाकई इन्होंने जानना पछाना साढ़े वैसे कम नहीं वैसे आ कि क्योंकि महकमा हर पास मतलब है लोग किस तरह फसने पे इन्होंने जंगल मौला रूम साहब फरमाया बड़े बड़े बुजुर्ग फरमाया मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब अडीफ अनवी साहब फरमाया यकीन कर सो तुसा की एक फार्मूला एक मैं तो आम नॉर्मल जहा बंदा फकीर आदमी कोई ऐसी बात मेरी तो है कोई नहीं मैंने खाली इस दरसा दाखिल हो जाना लेकिन अलहमदुल्ला इस दरसा भी दाखिल हो जाए उसकी इतनी खूबसूरत खुशबू है और इतना इतना सिस्टम आ कि बंदा उसने एक मस्ती उसने आ जानी यकीन कर सो अगर इस बंदे की चेक करना चाहते हो कि फकीर है कि नहीं एक तो है ना कि तुसा उ बेहो ना उन्होंने को बहना पैना न पूछ इन खरका पोछू की अरादत हो तो देखो दुए को बहने काफी बहना फिर बंदी पता लगना क्या सिस्टम है। बहरहाल जिस जगह भी बंदा नहीं जरा इस फील्ड में रूहानी फील्ड में बंदा फकीर होवे नाथान होवे एक सिस्टम जरा भी एक बंदा कोई दावा करने वाला है या किसी बंदे को दावा न भी करे तो उसकी पछाड़ना चाहते हो एक जने रखी करो गल जी जो

जी चूंकि टे घर गलां भी बड़ी गलत तो अस अलविदा प्यारे मेरे असा तुसा रब बेली ते जान हवाले उस दे ते जीवन दे हां फिर मेली अलविदा बेहाहू विच तका आस उम्मीद मेरी दा वो टह प्यान पका अलविदा ए तक अखां दी रोशनाई अजनी रज डिठायूं ते लगा दाग जुदाई अलविदा मेरी जिंदगानी ते टुरियों सैफ मलूका ना मैं मरसा ना सुख जी सा ते ला चलियों तप सूका अलविदाए मोती सोचे ते अथों प्योए समुंदर इलक दादी छट खड़ियों ते लाल शाना सुंदर अलविदा ए यूसुफ चलियों ते मिसर मेरे नू तज के याकूबे ज्यों पिया उम्र दा ते रौना मैनू रज के बड़ा जी चूंकि काफी ज्यादा आ मैं कुछ मुकम्मल करने लेकिन और बाद जी फरमाने हैं कि अलविदा मेरे असा तुसा रब बेली तेरी मेरे दिल में तू सफ हो जी मेरे तू चैन तेरे जगह मैं टूट गए दसने के आप इसकी आखने के पानी ना हिस्सा जिसने जो तुम पता इस रखना रखना टिकी भी होनी उसने भी थोड़ा पानी जरा कर मतलब है वो कनाल हाँ एक कनाल पानी या दरिया ठीक है जरा थोड़ी जी रुक मतलब जो जो पानी भी खड़ा ते कर उसने जरा खुले पानी जाने फिर वो बेड़ी जरिया तरना शुरू हो जानी इस वास्ते उसकी आ रहे हैं कि जरा तू तू जुलिया है तू जरा जिस वाला वो बेड़ी है जरा बेड़ माड़ी आस उम्मीद ना यह सा कि मेरा बेटा बड़ा उसी जवान उसी बादशाही कुर्सी संभाल सी कर इंतजाम आ मेरा जिंदा रख सी मेरे नए मतलब पता चल सी आसम बिन सफान बेटा जी इस सैफल मलूक आ इसने पंजा मतलब है यानी मुल्क में हुकूमत ही यह जानी वह बादशाह सलामत जी वह लोग से ना अज ना लोग भी अपनी वालदेन अपनी जी सिस्टम है उसकी अगर टूना चाहे है जी वह चाहे एक फील्ड साइज चलने के पीछे सारा नौ टिकर है जी लेकिन ना जराया ये अल्लाह ताला की जात है किस किस ना टोरना तो कौन बादशाह आसम बिन सफान वो अपना ना टोरना चाहन से बजरिया बादशाही एक जरिया लोड़ने से बादशाह मारा बेटा बन सी तो मार ना लेकिन बादशाह उन्हें समझा कि लीटर चला जुलिया ये मर जाती तो मुल्का थे करीक ने खत्म यानी मतलब है वो परेशान हो गए कि मेरा ना खत्म हो गया मेरी औलाद ही कोई नहीं मारा सिस्टम खत्म हो गया लेकिन अब भी देखो कितना अरसा गुजरे शायद हजार साल गुजरिया उसी कितना बेशुमार ज्यादा अरसा गुजरिया उसी लेकिन अज भी यह नौ आसम बिन सफान सैफल मुल्क नाल चलना पिया बात ही ना चलने वास्ते ना पक्का जो चलाना चाहे कोई बंदा तो उस वास्ते खलूस नीयत होना चाहिए अमल होना चाहिए अलाल की रोजी होनी चाहिए तरबीयत सही होनी चाहिए इंशाला जो औलाद राय रास्त पर ऐसी तो ना इंसा चलसी क्योंकि ना चलने जी होनी ना ठीक होनी ना यह ना बंदे ने मशहूरी बंद किस तरह होनी मरने के बाद जिंदगी में जबरे सलाम की के
اس آسمانی دنیا پر اعلان کرو ٹھیک ہے جی. پھر فرشتیاں کی ابرے فرماتے ہیں کہ جاؤ دنیا پر اعلان کر دیو ہر جگہ کرو جنگل فلا اللہ تعالی فلا گیا جی مل جاندی تسلی رضا والی یاد رکھو جی لو تسلی مل جائے گل ختم ہوئے گی بہرحال اللہ راضی ہون راضی ہو جا سن تو پھر دنیا پوری کوئی نہیں کر سکنی پوری دنیا اللہ تو کچھ نہیں بننا اس بالکل یعنی اس واسطے

इस कमरे की तकड़े वाली भी तो कमरे से बाहर तकड़े वाली भी नजर दिल पे। हाँ बस जिले वो नजर हो जाए ना बस गल खत्म हो जानी। तो वो अगर मिर्जा फरमाने के अलविदा चली हूँ एक तक अखंड रोशना मैं बुढ़ा हो गया और मेरी नजर जी है इस तुम्हारे जुदाई भी खत्म हो गई। लेकिन यार असल मैं तुझे तकिया भी कोई नहीं सा यानी रज के डिठा रहा मतलब मैं तो तुके ये तकिया भी नहीं सा। क्या मतलब आ कभी कभी कभार अपने कमे काजे बंदे लगा रहना किसी ड्यूटी पर लगा रहना नाले उसकी यह पता होना कि बेटा माड़े को लिया जी इतना ही है कोई जाना तो है कोई नहीं। एक कल बादशाह आया जिला उसकी खबर लगी ना बेटा जुड़िया उस लगे उसकी तकड़ लगा तो आखना मैं तुम्हें तकिया कोई नहीं मैं तुम्हारे को बैठा कोई ना मैं तुम्हें अपने को बढ़िया कोई नहीं तू तो तू बस इस तरीके ले रहा है तो बस हूं तुम्हारी नजर चली जुली हूं मुड़ी ऐसे कैसकी मैं कैसकी तक सा तू क्या तक से यही अपना दुख दार कर रहे। अलविदा मेरी जिंदगानी तो टूरी सैफ मलूका ना मैं मरसा ना सुख जीसा ला चली तब सूखा। अलविदा मेरी जिंदगानी टूरी मतलब अलविदा मतलब मैं तुझे जरा आखना कि हूं तू चुके जाई रहे तो हूं के अलविदा जिंदगानी यानी जिंदगी मेरी जिंदगानी मतलब है कि बेटे की आख्या ने बावे और कि माड़ी जिंदगी जिंद जान तू है सैफ मलूका तू मेरी जिंदगानी है मेरी जिंदगी है हूं जब तू चला जुमे है जी जब चला जुमे है तो ना मैं मरसा हूं इस तू जब मेरी जिंदगानी से तू जब मेरा दिल लैके चला जुमे है तो ना मैं जीसा तो ना मैं मरसा। भाई मतलब यह कि जल्द दिल बंदा चला जाए तो फिर उसने अंदर क्या हुई कि वो जीने जोगा भी नहीं यानी जीना पिया जान थी है उसने बिजो लेकिन वो चीज़ जी जी उसने दिल की खुश करनी सी वह खत्म हो गई। उन्हें ना मैं मरसा ना सुख जीसा तो सूखा ये तप सूखा प्यार ना तप सूखा ये कैसे आने ये असल चाहने कि यह यानी एक ऐसा बुखार यानी एक ऐसा बुखार आ जिसका बाद में यानी तपे यानी टीबी का सबब बनना इस तो क्या उसी कई बंदे की अमराज है टीबी ट्यूबरकुलोसिस जिसके आने ये हो जानी फैमिली कंटैक्ट में भी होनी बहरहाल इसने बेशुमार किस्म आई लंग्स नहीं भी फेफड़े नहीं भी होनी इसने बाद और भी इसने अंदर कोई गिल्टियां वगैरह हो जाने बाडी में इससे भी होनी मतलब इसने बेशुमार है बेशुमार निशानी यह भी है कि इसकी थोड़ा थोड़ा बुखार थोड़ा थोड़ा रहना टेंपरेचर थोड़ा थोड़ा इसकी बुखार रहना इसमें निशानी जो निशानी है उसने चाहना कि इस बीमारी ना असर चाह ये बीमारी बंदे कमजोर कर ली रहनी ये बीमारी बंदे की वो मतलब आस्ते आस्ते खून सानी रहनी तो कहते मतलब उन्होंने यह कि खून जरा बिल्कुल बंद ने सड़ी जाना तो वो न मरने जाना जीने जा रहना तो मैं इतनी कि तू उस तप सूखा लाई जुने हैं वो टीबी ऐसी बीमारी लाई जुने हैं जरा माड़ा बस मैं अपनी बस इस किस्म से सही कर सा। बाला जी शहजादा जनाब हूँ इनशाला अलविदा होना पे आस्ते आस्ते इनशाला तुम मैं दसिया कि यह शहजादा असं जो शहजादा समझ में गल की ये रूह जी है ये शहजादा आ ये रूह जी है वो बस जुड़ी ये किधर जानी जानी पी ये अपनी असल नाल मिलने तो जा रही ये बाकी जो सिस्टम आ सारा है जी ये दिल जरा आ चूंकि इसने नाल बड़ा कनैक्शन आ इसकी बादशाह क्या गणा है जी ये बाकी जिसम ने दिस बाकी जो सिस्टम ये भी तुम्हें पता ही मतलब ये भी अपनी अपनी जाब करने पे जे बादशाह जब बादशाह खत्म हो गया तो जाब खत्म पता भी ना बादशाह मर किसे चले तो यह सारी चीज़ा इन्हें कंट्रोल खत्म कोई नहीं खत्म दिल है कि बंद के अटैक हो जाए बंदा मर जाना बंदा मरना यानी दिल शुरू होना ना जल ये फंक्शन ना कराए तो बाकी छुट्टी हो गई बस यह चीज़ गल समझी किसी बहल ये जनाब फिर एक सिलसिला है फिर सारी चीज़ा बड़ा ले चूंकि एक एक खास गल लिया अस किले रोने असं पिछले साल जी पिछले बल्कि हफ्ते शुरू किया टाइम फिर सारा पूरा गया कि मन के मन माला मन के मन दी माला दे रोल दर्दू रोशन तन ते मन जान उसी बातन गैब ताई सदा जाहिर आ तक लेवेंगा जदू पहचान उसी जितना दिल रोसे उतना ही कुर्बे आन उसी ते याद सनम दी जन्म न्यान थी ते राजी तद ओ जाने जानन उसी याद सनम दी जन्म न्यान थी ते राजी तद ओ जाने जानन उसी। बहरहाल जी टाइम तो खत्म हो गया सब नहीं इस बार

0: अस्सलाम वालेकुम, सलाम। आप सुन रहे हैं इस वक्त लिंक एफएम 96.7 एफएम और इस वक्त सुबह के 5:02 हो जाते हैं और खबरों के बाद बिल्कुल ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड होता है, लेकिन हर रोज जो है वो आपका और मेरा साथ होता है और आज भी साथ रहेगा। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत कलाम के साथ।
1: तुम एक गोरख दंदा हो, ये कह सकते हैं।

हैरान हूँ इस बात पे तुम कौन हो क्या हो, हाथ आओ तो बुत, हाथ ना आओ तो खुदा हो। अक्ल में जो घिर गया ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया फिर वो खुद।

एक उलझी हुई तस्वीर बना रखा है, कुछ समझ में नहीं आता कि ये चक्कर क्या है। खेल क्या तुमने अजल से ये रचा रखा है, रूह को जिस्म के पिंजरे का बना कर कैदी, उस पे फिर मौत का पहरा भी बिठा रखा है। देख तदबीर के पंछी को उड़ाने तुमने, दामे तकदीर भी हर समत बिछा रखा है। करके आरायशें कौनैन की बरसों तुमने, खत्म करने का भी मंसूबा बना रखा है। लामकानी का बहरहाल है दावा भी तुम्हें, नहनु अकरब का भी पैगाम सुना रखा है। ये बुराई वो भलाई, ये जहन्नुम वो बहिश्त, इस उलट फेर में

नहीं मुर्दों को अता की जिसने, वो मसीहा भी सलीबों पे सजा देते हो। ख्वाहिश दीद जो कर बैठे सरे तूर कोई, तूर ही बरके तजल्ली से जला देते हो। नारे नमरूद में डलवाते हो खुद अपना खलील, खुद ही फिर नार को गुलजार बना देते हो। चाहे किन आन में फेंको कभी माहे किन आन, नूर याकूब की आंखों का बुझा देते हो। देख यूसुफ को कभी मिस्र के बाजारों

हो, खुद ही लगवाते हो, फिर कुफर के फतवे उस पर खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। अपनी हस्ती भी वही क्रोध गवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। कोई रांझा जो कभी खोज में निकले तेरी, तुम उसे झंग के बेले में रुला देते हो। जिस्त जुले के तुम्हारी जो चले कैस कोई, उसको मजनू किसी लैला का बना देते हो। जोत सस्सी के अगर मन में तुम्हारी जागे, तुम उसे तपते हुए थल में जला देते हो।

0: name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

वेलकम बैक, खुश आमदेद जिन्होंने अभी ज्वाइन किया। ये क्वाली स्पेशल और मैं हूँ फैसल याकूब सुल्तानी। और क्योंकि वक्त था ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, स्टे ट्यून्ड। और ब्रेक के फौरन बाद अब चलते हैं हम अगले कलाम की तरफ।

0: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें NHS.UK/childhoodvaccinations।

0: 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aisi ke aapko apne vatan ki yaad dilaye.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khane ke liye sab hai betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हार चलाने हो या फिर कोई क्राइन गड्डी ना एक्सीडेंट होई गया द क्लेम टीम तुसनी खिदमत विच हाजिर है जेडे शफील्ड दादरम

0: आजकल लोग सड़कों पर चलते फिरते चोरी के मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें फरोख्त करते हैं। चोरी की चीजें खरीदने का मतलब आप इस चोरी में शामिल हैं। इसलिए चलते फिरते लोगों से चीजें हरगिज न खरीदें, बल्कि ऐसे अफराद के बारे में पुलिस को आगाह करें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: Inspire 105.1 FM. I have

0: Be inspired. Inspire FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abed Rahman.
3: My name is Shahin Mudassir.
4: This is Rahul.
5: My name is Ashan.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आईटेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाह

0: You're listening to Link FM.
1: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
2: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
3: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, Azir solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Azir solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
4: अगर आपकी टैक्सी मिनी कैब प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं 0333-00-571-0009 पर कॉल करें क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या द क्लेम टीम डॉट यूके पर तलाश करें
5: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर पर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.
7: जी बिल्कुल, सामीन इकराम, ये ब्राडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM है, हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 और दूसरा नंबर है जी 07800599563। बहुत ही खूबसूरत सा एक पैकेज, जदीद भी कह लें और बहुत ही अब मॉडिफिकेशंस नहायत खूबसूरत हुई है जी नशरियात में, और हमेशा से कोशिश होती है कि खूब से खूब तर की तलाश में रहे और खूब से खूब तर जो है वो मौजूद सामईन इकराम की खिदमत में पेश करे आपके लिए एक, वो जैसे कहते हैं कि जानदार, मौसर और वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इफेक्टिव प्रोग्राम्स जो है वो हमारा मकसद होता है। जी हाँ, मुझे भी चूंकि फीडबैक मिली तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना फर्ज अदा कर दूं कि आए दिन तो ब्राडफोर्ड एशियन रेडियो जो है वो बेहतर से बेहतर और खूब से खूब तर की तलाश में रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे बहुत खूबसूरत फीडबैक मिली, जो मुझे अच्छा लगा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं कि इंतहाई, जिसे कहते हैं, खूबसूरत जो आवाज स्पेशली हमारे रेडियो चैनल को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ली गई है, वो मुझे ताज़ा ताज़ा उसकी फीडबैक कल मिली तो मैंने सोचा आपके गोश गुजार कर दूं। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया, स्पेशली इस वक्त मुझे, अगर बैक होम से मेरी खुद की फैमिली भी, मैं उन सब की शुक्रगुजार भी, उनका शुक्रिया भी अदा करती हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां मेरे ऊपर एहसान फरमाया कि अल्लाह पाक ने अपना शऊर व आगही अता फरमाया हम सबको जितनी भी सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी फैमिली समेत हम सबको, हम सब अल्लाह ताला के ममनून मशकूर के रब्बुल इज्जत ने हमें वाहदानियत और तौहीद के ऊपर कायम रहने वाले और खात्मा बिल ईमान हम सब का इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का पाक फरमाए, और हबीब आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के उम्मती बनाया और खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली सल्लम की खत्म नबुव्वत पर, रिसालत पर हमें दलील और गवाही देने वाले बना दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का इंतहाई बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, एहसान है। मैं खुद अपनी जात को अगर देखूं कि मेरे ऊपर मेरे रब्बे करीम का बहुत बड़ा एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज एक दफा फिर आप सबका भी शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट किया, और पूरी कोशिश होगी कि जुमा के दिन आज हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करते हुए, अपनी बख्शिश और मगफरत अल्लाह ताला से मांगते हुए, डेरों डेर जो भी हमारी दुआएं हैं उनका एहतमाम करें, दुरूद सलाम का सिलसिला इंशाअल्लाह ताला रहे। और आज बिलखसूस मैंने कुरान करीम की वो जो دعائیں ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کو مینشن کیا ہے. کس لیے؟ ہمارے لیے, کہ ہم مانگیں. تو یہ ازل سے ابد تک ہے قرآن. تو ہم نے قرآن پاک سے رہنمائی لینی ان شاء اللہ تعالیٰ. ہم قرآن پاک کی میں جو دعائیں ہیں ان کو آج ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف بھی حاصل کروں گی. اور دیکھیں وہ شرف حاصل کرنا بالکل یہ خود کے لیے بھی ہونا چاہیے کیونکہ قرآن کی بات ہو رہی ہے اور اللہ رب العزت کے جو کتاب ہے اس کی بات ہو رہی ہے. مزید سامعین اکرام, میرے پاس یہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 854. جی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 854 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے. سبحان اللہ. اور جمعہ کی فضیلت یوم مشہود بھی اسے کہا جاتا ہے, اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. اور اتنی اس کی فضیلت و اہمیت ہے جو کہ بچے بچے کو الحمدللہ پتا ہے اور معلوم بھی ہونی چاہیے. تو حضرت صاحبہ اکرام, اب اس وقت میرے پاس اپنے رب العزت کے حضور پیش کرنے کے لیے اور اللہ پاک سے مدد مانگنے کے لیے ایک انتہائی اسپرچل کلام جسے کہتے ہیں روحانی کلام ہے جی, اور منہمک ہو کے بڑے ادب سے احترام سے سنیں تاکہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور اپنے فضل اور انعام و کرام سے ہمیں نوازے انشاءاللہ تعالی. آمین ثم آمین یا رب.

जी मुझे स्वामी इकराम प्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर माशाल्लाह कसीदा भुजदा शरीफ सुनने की सआदत हासिल की हमने हमारी वेबसाइट ब्रॉडफेडेशन रेडियो .co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी। मेरे पास बहुत ही खूबसूरत ये कलाम है और मैं कहती हूँ कि क्या ही बात है इस कलाम की, और आइए ये बड़ी अकीदत एहतर ये कलाम सुनने की सआदत।

0: जा रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
0: जी हाँ, पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रोन्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी मेनी स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
2: मैनिंगम सुपर स्टोर,
3: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice at Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
1: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर, कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है, तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
2: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
3: And the winner is
4: Your Business Being Heard on the Radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
6: Sheffield's very own community radio station.
7: Link FM.
8: My name is Shireen.
9: My name is Abed Rahman.
10: My name is Sai Mudashir.
11: This is Rahul.
12: My name is Azhar.
6: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
7: Link FM.

0: Dream.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saim Mudashir.
3: This is Rahan.
4: You are listening to Link FM 96.7.
5: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
6: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning कॉन्टैक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824।
7: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
8: And the winner is
9: Your business being heard on the radio.
10: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
11: Sheffield's very own community radio station.
12: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saim Mudashir.
3: This is Rahan.
11: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
12: Link FM.
13: Would you like to gain experience whilst building up your CV? Link FM is looking for admin workers, graphic designers, researchers, producers, editors and presenters. Do you think you have an idea? Contact the office on 0114

इनकी आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक।

0: धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7 FM।
2: जहां दिल मिलते हैं, जहां बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल,
0: जहां बातें बनते हैं, वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
3: लिंक एफएम शेफील्ड।

0: the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
4: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07809 568 233 or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
5: लो जी सुनो जी आई गए खान कैटरिंग आले खान कैटरिंग राधरम जिन्होंने मजेदार खाने ना कोई जवाब है नहीं एक बारी अजमाई के तको शादी ब्याह सालगिरह मानिया मेहंदी और दिगर तकरीबात आस्ता एक महंगाई ने दौर विच सस्ता ता मजेदार खाना आर्डर पर बनवाई सकने हो एक और भी गल बुझो खान कैटरिंग राधरम वाले पूरे साउथ यॉर्कशायर विच कैटरिंग नी डिलीवरी भी करने आर्डर निका होया या बड़ा ऑलवेज वेलकम खाने ने आर्डर वास्ता भाई इफ्तिखार की फोन करो या व्हाट्सएप पर रابطہ करो 07931737547 या

0: 96.7 Link FM.
1: You're listening to Link FM on 96.7 FM, linking communities, thinking positive across South Yorkshire.
2: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
3: लिंक एफएम शेफील्ड।
4: जबरनी

0: 07419 299729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri peri chicken burger.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khane ke liye sab hai beta. Or visit Nayabs online.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हर चलाने हो या फिर कोई क्राइन गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है द क्लेम टीम तुम्हारी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदोनवाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुम्हें किमाया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्हां दा फोन नंबर है 0330057100009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Tu sabka hai khuda, tu sun meri dua, ye toota dil mera tadpata hi raha hai तू सुन मेरी दुआ ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा
10: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM
11: My name is Shireen
12: My name is Abdul Rahman
13: My name is Shai Mudashir
14: This is Rahul
4: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Simon Bashir.
3: This is Rahul.
4: You are listening to Link FM 96.7.
5: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
6: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning Contact number 07955198814 and 07955198824.
7: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
8: And the winner is
9: Your business being heard on the radio.
10: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
11: Sheffield's very own community radio station,
12: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Simon Bashir.
3: This is Rahul.
11: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
12: Link FM.
13: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

रहे हो सारे। उम्मीद करते हैं जिथे जिथे तक भी मेरी आवाज इस वेले पहुंच रही है बिल्कुल सारे तुसी ठीक ठाक होवोगे ते पंजाबी बिल्कुल तैयार होवोगे। किदा ठीक है ना मैं

जी हाँ बिल्कुल, उसी सुन रहे हो लिंक FM 96.7 ऐसे वाले सुन रहे हो पंजाबी विरसा प्रोग्राम सरबजीत दे नाल जो कि हर शुक्रवार की शाम को फ्राइडे की शाम को 7 बजे तो 9 बजे तक पेश किया जाता है यूके के टाइम मुताबिक। जी हाँ, साढ़े 7 बजे तो बाद मैं अक्सर पूछती हूँ एक सवाल तो बुझारत या सवाल

0: workshops and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: तुसा की परेशान खलते हुए जी
2: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन सा एमओटी सेंटर ले जाऊं
1: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं ऐ साडे पापा बुला बुला

0: ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਕਵਾਲੀ ਦੀ
1: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
2: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई है और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccination।
3: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM, सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक FM, दिल से आपके साथ
4: लिंक FM Sheffield,
5: लिंक FM your number one community radio station.
6: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.

0: 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri peri chicken burger.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hai beta. Or visit Nayabs online.co.uk.
3: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हा चलाने हो या फिर कोई क्राइम की गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया तो द क्लेम टीम तुम्हारी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदोन वाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुम की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 03300571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp
9: 07939-849-339. तू सबका है खुदा तू सुन मेरी दुआ ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा
10: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM
11: My name is Shireen
12: My name is Abed Rahman
13: My name is Shai Mudashir
14: This is Rahul
4: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
15: Link FM.

बहुत ही प्यारा वासी, प्यारी वासी सुविधा खानू जी तो गीत भी बहुत सुना सी। बस आखिरी गीत लगावांगी तारिक साहब जी तुहाडी पसंद दा गीत, तुसी हुणे रिक्वेस्ट भेजी है ते बस तुहाडा मैं अपने दिल दियां गहराइयां तो धन्नवाद करदी हां जिन्होंने मेरा साथ दिता ते मैनूं हुण दिओ छुट्टी प्रोग्राम करदे समां माफ ते मेरी तंदुरुस्ती लम्मी उम्र ते ढेर सारियां खुशियां नसीब करे, बीमारां नूं ठीक करे, भुक्खियां नूं रजावे, रोंदियां नूं हसावे, जे उपर वाले तुसीं ख्याल रखना, हो सके तो सरबजीत नूं भी अपनियां दुआवां विच याद कर लेना। तुहाडा ते मेरा साडा सारिआं दा रब रखा जी।

धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक।

0: are listening to Link FM 96.7.
1: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
2: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
3: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
4: And the winner is
5: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
7: Sheffield's very own community radio station.
8: Link FM.
9: My name's Shireen.
10: My name is Abed Rahman.
11: My name is Saim Mudashir.
12: This is Rahul.
7: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
8: Link FM.
13: Linking community. This is Link FM. 96.7 FM.
14: जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल
15: जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम दिल से आपके साथ
16: लिंक एफएम शेफील्ड
17: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम
18: सुबह की रोशनी शाम की महफिल हर दिल का राज है लिंक एफएम दिल से आपके साथ
16: लिंक एफएम शेफील्ड

0: music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
1: This is Link FM.
2: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले और हर सूर दिल को छो जाए,
1: वही है लिंक एफएम।
3: दिल से आपके साथ
1: लिंक एफएम।

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
1: मैं और रंजीत चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है।
5: मेरा नाम अहमद अस्कर है।
6: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूं।
7: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
8: मेरा नाम इमरान है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।

0: name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saim Mudashir.
3: This is Rahul.
4: My name
5: listening to Link FM 96.7.
6: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
7: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
8: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
9: And the winner is
10: Your business being heard on the radio.
11: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
12: Sheffield's very own community radio station.
13: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saim Mudashir.
3: This is Rahul.
12: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
13: Link FM.

0: तेरा तड़पता ही रहा है सदा, तू सबका है खुदा, तू सुन मेरी दुआ, ये टूटा दिल मेरा तड़पता ही रहा है सदा।
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.